नजर च साडी दृष्टि च कोई ऐसा नुक्स है, कोई ऐसी कमी है, कोई लैक है जो बाबा जी नूं सामने दिसदा है वो सानू नहीं दिसदा। जो बाबा जी नूं दिसदा है वो सानू नहीं दिसदा। सानू की दिसदा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये अपना है, ये बेगाना है, ये छोटा है, ये वड्डा है, ये गरीब है, ये अमीर है। सानू द्वैत, डुअलिटी, डिफरेंसेस नजर आते हैं। गुरु बाबा जी ने सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु की जो जोत है, जो एनर्जी है, जो उसकी होंद है, जो डिवाइन बीइंग है, जो करंट ऑफ लाइफ है या थ्रेड ऑफ लाइफ है, जो कि साढ़े सबना के विच दी गुजर रहे। जिस तरह एक हार हुंदा है, हार च कितने फुल हैं, कितने रंगा के फुल हैं, और उन्हें सबना नू जो सपोर्ट देने वाला जो थ्रेड है वो एक ही है और वो छुपया पे उन्हें फुलों के छुपया पे। इस तरह तमाम जितने भी जिस्म हैं, तमाम जितनी भी फॉर्मेशन है, ये तमाम जितने भी आकार हैं, इन्हों तमाम आकारों के एक ही वो थ्रेड है, एक ही वो धागा है, जिसनों गुरु बाबा जी आखते हैं एक है सूत परोए मणि है। एक ही वो सूत है जो कि फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ या फाउंडेशन ऑफ द इंटायर एग्जिस्टेंस है। सानू वो नजर नहीं आना। अगर सानू नजर नहीं आता तो जो मोस्ट असेंशियल चीज है देखने वाली, जिसके आधार पर यह सारी रचना है, वो तो सानू नजर नहीं आती। गुरु बाबा जी अपनी वाणी च आखते हैं, दिसै सुनिए जानिए स्वाव ना पाया जाए। कहते हैं वैसे असी भी सारे कह दें कि हर थां रब ही है, पर दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग और अवर कंडीशनिंग, कि असी कह दें हाँ कि हर थां ते रब है, पर सानू रब उस तरह नहीं दिसदा जिस तरह बाबा गुरु नानक देव जी नूं दिसदा। दिसै सुनिए, उसके प्रति असी सुनते भी हाँ, विचारा भी करते हाँ, वी टॉक अबाउट इट, पर सानू उसकी प्रेजेंस, उसकी जो धुनी है, उसकी होंद है, वो सानू फील नहीं होंगी, सुनाई नहीं दिंदी। जानिए, जानिए का भाव कि असी सब रब के वास्ते जानते हाँ। कि असी डिस्कशन कर बैठ जाइए तो वी ऑलवेज we will have something to say about God. पर गुरु महाराज जी आखते हैं ऐ जगत के प्यारे लोगों, तुसी सिर्फ सुनी सुनाई ही गल करी जा रहे हो। असी रहराष्ट्र रोजाना एक पंक्ति पढ़ते हैं, सुन वड्डा आखे सब कोई, सारे उसनू वड्डा वड्डा ते कहंदे हैं पर वेख के नहीं कहंदे, उसनू मिलके नहीं कहंदे, उसनों एक्सपीरियंस करके नहीं कहते, विदाउट एक्सपीरियंस इधरों सुनिया उधरों सुनिया इथों पढ़िया उथों पढ़िया तो वड्डा वड्डा आखी जाने। कहते इस करके जितनी देर तक तुसी सुन सुना के ही गल करते हो, जो रब नूं मिलन का टेस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, जो उसनों मिलन की थ्रिल है, वो तुहाडे जीवन दे विच नहीं, वो तुहाडा अपना ओन एक्सपीरियंस नहीं। गुरु महाराज जी आखते हैं सुन सुन आख है केती बाणी। कितनी दुनिया है जो सुन सुना के कही जाती। साडी इस शब्द नूं पढ़न तो जो मेरा भाव यह है कि असी अपनी अवस्था, अपना लैवल, अपनी सिचुएशन नूं अंडरस्टैंड कर सकीए कि एक ऐसी हस्ती है जो सानू नजर नहीं आती पर वह है। गुरु बाबा जी नूं वह नजर आती है। हुण महाराज जी नूं इह पुछिए, महाराज सच्चे पातशाह जो आप जी नूं नजर आंदा उसका आनंद ते आप ही लै रहे हो, उसका आनंद सानू ते नहीं ना आ सकता जो सानू नजर ही नहीं आंदा, सानू किवें ओह नजर आए? उसका जवाब

तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लडाया। रिलाइंग ऑन योर मर्सी डियर लॉर्ड आई हैव इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेयर्स लाइक ए फुलिश चाइल्ड आई हैव मेड मिस्टेक्स ओ लॉर्ड यू आर माई फादर एंड मदर। It is easy to speak and talk, but it is difficult to accept your will. Pause. I stand tall. You are my strength. I know that you are mine. Inside of all and outside of all, you are the self-sufficient Father.

0: सत्य का युग मेला सच्य तेरे कल सच्य ब्राह्मण सच्य तेरे सच्य का सच्य तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरे करण सच्चा निशान सच्चे तो जाके ला करू सच्चे शब्दान सच्ची सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे पाशा ना सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कच कच माला पहला
0: बड़ी बड़ी बड़ा बताला बड़ी बड़ा का सच नियो बड़ी बड़ा जने के दाओ बड़ी बड़े जाने वाला बड़ी बड़े बुझता पाओ बड़ी बड़े जो पूछना दात बड़ी बड़ा जाए आप नान करना कथनी जाए खींचा करना सर्ब जाए महिला दूजा ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उमाए लेकिन हुक्म कर बना इतना पानी कर ले इतना माया श्रीनवास एने नान तू गुरुमुख जानी जान को आप करे पर

मूर पंडित मुंडी तो जितने के प्यार धर्म धर्म करेगा वावे मंदिर मुखद्वार जति जावे दुख ना जाने छठ बह कर बार सबको पूरा करोगे कितना कोई आके पद परवाना पीछे पाई गया था नानक तो ले जा पे पद स्वर्ग के नानक का।

तो पक्कन सिदाय तो नानक मुखन तक पाए पुर कित मिली ए कसम तुम्हारे दिन के जड़ा लिंदी आई ए तेरी जगत ने हल है कसम जब तुझ लगे रूप से बन जाए।

गौ ब्राह्मण को कुरलाव गो व्रत न जाय। तो टिका तेज माली तन में जगाई अंतर पूजा पड़े कि बस हिंदू का पाई छोड़ी लिपखंडा नाम ले जाता है।

0: जो जी हो सुख बे मुंह का के अभाव बीजे बिख मंगे अमृत बे को नाले आने दोस्ती बारा रुसनो
1: कदे ना विराजे जन के वरते देखो कुंद व्यास पर सुंदर बास मावे दूजे पास साहब जी जुगन जले के गुणदान
0: माने करो गुणदान।

कर्ण कान समरथ है करते, मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझे आपे शिष्ट से जिया आपे कोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई, जो करे सो होई, वड्याई गुरमुख दे प्रभ, वड्याई

0: जय कीर्तन तेरा कलयुग में
1: कीर्तन प्रदाता गुरमुख जपिए लाए ध्याना
0: कलयुग में

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसार न जाए कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाल सहसे जियो मलीन है कित संयम तोता जाए कित संयम तोता जाए मन तो शब्द लागो हस्यों रहो चितला कहे नानक बोल प्रसादी सहज उपजाई

कौड़ीदान महंडा तलिखा तो मिले तो मस्त कलाई है कूड़ा लाल छेड़िया हो कमाल त्याई है फल तवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द का करता है सर्व शब्द एक शब्द जो जाने पे हो नाटक रास है सोई नंदन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा वस्तु जो

0: रत्नवा बारू पीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ रच बिगड़िया ना हनी अजहू

0: जय कीर्तन तेरा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए ध्याना
1: कलयुग में कीर्तन प्रधाना
0: गुरुमुख जपिए लाए ध्याना आप तरे सगले पुल तारे हर दर गए।

बादशाह आप कृपा कीती है और असि अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।